0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीयूनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीयूनो और रेडियो

0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीयूनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीयूनो और रेडियो